0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 seats का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
4: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
0: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
2: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
3: Us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है. तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है. लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें. ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें. ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है. ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है. इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है. अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं. जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें. अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें. अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स. डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है. बरवक्त और पेशी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: सब मुड़ के देख रहे हैं।
5: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
6: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
5: एग्जैक्टली, Palisade Calligraphy इज अ ट्रू 7-सीटर विद 3 यूजेबल रोज, कैप्टन सीट्स एंड अ ड्यूल पेन सनरूफ फॉर अ प्रीमियम एक्सपीरियंस।
6: अच्छी है पर मुझे तो 8-सीटर चाहिए थी।
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
5: एक्सपीरियंस दी ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: This program is brought to you by
7: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
0: And
8: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: And
9: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
10: Tabal Family Mixture laye, Umrah par jaye.
0: And
2: HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL।
0: एंड
11: डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
0: एंड
12: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: एंड
13: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
0: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। 365

0: FM 100 Traffic Update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरूख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस वक्त वो तमाम ट्रैफिक जो कयूमाबाद चौरंगी से इस वक्त जा रहा है अख्तर कॉलोनी सिग्नल और वहां से डिफेंस मोड़ की जानेब, उस पर ट्रैफिक का कोई दबाव इस वक्त देखा जा रहा है। औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से वो ट्रैफिक जो मुर्तुजा चौरंगी से ब्रूक चौरंगी की जानेब जा रहा है, उस पर ट्रैफिक का इस वक्त दबाव है और गाड़ियां स्लो मूव कर रही हैं। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करने का इरादा रखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगा रहें ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: करो और विन करो ढेरों इनामात। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
2: This program is brought to you by Shaukat Khanum Karachi ki takleef and
3: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
2: and
4: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
2: and
5: Tabal family mixture laaye umrah par jaye
6: and HBL freedom account jahan khab वहाँ HBL
7: एंड डाबर रेड टूथपेस्ट 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
2: एंड
0: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
1: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
8: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
4: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
5: 100 FM.
6: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात. पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.
5: 100 FM.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef
1: and
3: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
1: and
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
1: and
5: Tabal family mixture laye, umrah par jaye
1: and
0: HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL
1: and
6: Dabur red toothpaste, 7 dental problems ka ek solution
1: and
7: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally
1: and
8: Pakistan ka best bank Nizam Bank, the premier Islamic bank.
9: Pakistan humse hai, hum acche to Pakistan acha, to aao ehd karein ki jaisa Pakistan hum dekhna chahte hain वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
10: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
12: FM 247365।
13: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
14: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
13: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
15: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
13: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
15: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
15: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
13: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
13: आइए वेट से आगे का सोचें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In chote kadmon mein kal ke khab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा.
3: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक. तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
5: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
7: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
9: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
10: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. Grand, bold and hard to miss.
11: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
11: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
10: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
11: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
10: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
12: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111-11-7837.
13: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
14: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
15: शौकत खानम कराची की तकनीक
16: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
17: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
18: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाए उमराह पर जाएं
19: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
20: एंड डाबर रेड टूथपेस्ट सेवन डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
21: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
14: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
22: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
23: FM247365
24: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
25: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
6: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
5: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
7: किसने कहा था पैसे

0: परम पम पम।
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: अबाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111872725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। अबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
10: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
9: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
12: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
13: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
0: This program is brought to you by
14: Shaukat Khanum Karachi Ki Takki
0: and
15: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja
0: and
16: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
8: Tabal Family Mixture laaye Umrah par jaye
0: and
2: HBL Freedom Account jahan khwab वहाँ HBF
0: एंड
10: डाबर रेड टूथपेस्ट सेवन डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
0: एंड
17: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरल

0: Center.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
6: 100 FM.
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
6: 100 FM.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.

0: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum Karachi ki takleef
3: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
4: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
5: and Tabal family mixture line umrah par jaye
6: and HBL freedom account jahan khab वहाँ HBL
7: एंड डाबर रेड टूथपेस्ट 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
8: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
0: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
9: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: किसने कहा था पैसे बचा।

0: This program is brought to you by
1: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: 100 FM.
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
5: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: Like us on facebook.com/FM247365 Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: विया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
4: कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मनसूखी से मुतल किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो. अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं. शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है. पीटीए आपके शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विस इसकी फराहमी के लिए पूर अज़्म है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटी.
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon. This program was brought to you by
1: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji hungi aapse khoob sari baatein share karenge, kuch information, saath hi saath aapse puchhenge sawal aur hungi ji bahut sari baatein. तो चलें जी सबसे पहले कर लेते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं होता है बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ तो चलें जी लेट्स बिगिन विद द ट्रैक

0: आ जाए तू तो जी आ गए हैं हम, क्योंकि किसी को तो बुला रहे थे तो हमने कहा ठीक है जी हम ही आ जाते हैं और आप लोगों के साथ प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का हिस्सा बन जाते हैं। तो जी प्रोग्राम का हो चुका है बाकायदगी से आगाज और बाकायदगी से आगाज होने के बाद आपको सबसे पहले बताया जाता है तरीका कार कि कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ जो है वो आप RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कॉमेंट कर सकते हैं और वहां पर लुक वर्ल्ड ने हाजिरी भी लगा दी है, दैट इज सो नाइस। और फिर बाकी लोगों के लिए भी यही कहना है कि आप हमें 3636 से मैसेज करें या फिर फातिमा खान की फेसबुक पेज पर मैसेज करें, उस पर करें जिस पर आपको लग रहा है कन्वीनियंट है आपके लिए, लेकिन देर ना करें अपनी हाजिरी लगा दें। तो भाई आज का हमारा सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें भी हम आपकी राय लेंगे। और आज का हमारा सवाल यह है कि किसी इंसान को समझने के लिए आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है, किसी भी इंसान को जानने के लिए समझने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीज बहुत मैटर करती है, उसकी बात करने का अंदाज, उसकी बातें या उसका अखलाक या उसका बोलने का तरीका या उसके हाथ चलाने का तरीका। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम एक नॉर्मल आदमी में देख रहे होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी भी इंसान को समझने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे जैसे भी हमने कुछ दिनों पहले फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात करी थी, तो ऐसा भी होता है कि हम बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं और फिर कुछ वक्त गुजारने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं यार, हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं है, ये तो बड़ा मुख्तलिफ फितरत का इंसान है। तो किस तरह किसी भी इंसान को जज किया जा सकता है आप हमें जरूर बताएं मैसेज कर या फिर कॉमेंट कर। हम कर रहे हैं आपके मैसेज का इंतजार और किया है आपसे सवाल, तो देंगे आपको मौका सोचने का, सोचें और हमें बताएं। जब तक हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
3: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। FM 100 लाइक अस। is facebook.com/FM247365. FM 247365.

यस एवरीबॉडी, सो हम आ चुके हैं वापस। और आज हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि किसी इंसान को समझने के लिए आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है। सो आज का हमारा सवाल ये है, जिसका जवाबात हमारे पास आना भी शुरू हो गए हैं, जिसे हम एक एक करके शामिल करेंगे। तो लुकबल कहती है कि किसी इंसान को समझने के लिए जरूरी है कि उसकी बात को अच्छी तरह सुना जाए, वो क्या कह रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए ताकि वो जो है किसी भी इंसान का अंदाज लगा सकें। तो बिल्कुल जी, आप अपना हमें जवाब दे सकते हैं 3636 पे। साथ ही साथ ट्रैक को शामिल करते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: बात की, वो जा रहा है जो कोई शब्द गुजार के।
1: ओके जी, सो ट्रैक के साथ हम वापस आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो आप सबके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो हमें आरजे समीहा ने भी ज्वाइन किया है और वो कहती हैं कि सब्र। ओके, तो किसी भी इंसान को समझने के लिए आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है? तो आरजे समीहा कहती हैं कि जी सब्र जरूरी है। वेल राइट जी। लोकपाल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, मजे में हैं और आपके जवाबात को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तो भाई कोई कहता है सब्र जरूरी है, कोई कहता है कि उसकी बात को सुनना चाहिए। अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि आजकल ना हम बहुत ज्यादा जज करने लगे हैं लोगों को और वेट हम नहीं करते किसी भी चीज का। हमने ना पहले से ही अज्यूम कर लिया होता है कि ये शख्स ऐसा निकलने वाला है या ये ऐसा है या वो वैसा है, और हमें एक्चुअली में ना उसके बारे में कुछ नहीं पता होता और हम खुद ही से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऐसा है या वैसा। यार मुझे याद है ना कि किसी से, अच्छा और ये जो हमारा मसला होता है कि उसने ये कहा था, तो यानी कि किसी से सुनी है ये बात, तो वो तो आपको लाजमी लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो मतलब नेगेटिविटी को ना, ये ह्यूमन नेचर है, हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी को लाएं, तब्दीली लाएं अपनी भी जिंदगी में, और अगर आपकी बनस्बत किसी और की जिंदगी में भी तब्दीली आ रही है तो ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड चेंज। लेकिन एक हमारा जो मेन मसला है वो किसी को जल्दी जज कर लेना, एक ये कि खुद में कोई तब्दीली ना लाना, और अगर किसी की वजह से आपके अंदर कोई पॉजिटिविटी आ रही है, कोई अच्छा फैक्टर आप ला रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट ना करना। ये सब बड़ी गलत चीजें हैं कि भाई मैं ये कहती हूं कि अगर आपने किसी की वजह से कुछ सीखा है या किसी की वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं तो उसे जरूर अज्यूम करें, उस चीज को माने और उस शख्स को अप्रिशिएट भी करें कि यार ये चीज ना मैंने तुमसे इंस्पायर होकर देखी थी या तुमसे इंस्पायर होकर सीखा है। लेकिन यहां पर लोग ना पता नहीं ऐसी बातें सुनकर बड़े ही ज्यादा मतलब कोई एटीट्यूड में आ जाते हैं कि अगर मैंने ये कह दिया ना तो यार ये आदमी तो भाई बड़े स्टाइल दिखाने लगेगा या ये हो जाएगा। ये जो हम सोच के बैठे रहते हैं ना, ये चीजें जो है वो बड़े मसले ले आती हैं जिंदगी में। तो इतना ना सोचा करें, सोचें तो अच्छी बातें सोचें, वो बातें सोचें जिससे आपको लगता है कि जिससे आपकी जिंदगी में वाकई में तब्दीली आ सकती है, चीजें मजीद बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये क्या जरूरी है कि सोचना है तो गलत ही सोचना है। तो ऑलवेज थिंक गुड, और वो कहते हैं ना कि जी ये दिल में रहने वाले दिल से कभी नहीं निकलते, बदले हजार मौसम लेकिन रिश्ते नहीं बदलते। और इसी बात पर मुझे याद आ गया कि इस ट्रैक को शामिल करते हैं, बहुत टाइम से मैंने इस ट्रैक को अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया है। तो डील डन होती है, अभी हम ब्रेक की जानब जा रहे हैं और वापस आएंगे हम इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, क्योंकि हमारी अभी इस वक्त ना दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो हम ये पूछ रहे हैं कि किसी इंसान को समझने के लिए आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है, और उसी के साथ साथ रिश्ते भी हमें याद आ गए कि कितने खूबसूरत और अहम रिश्ते हमारी जिंदगी का हिस्सा बने रहते हैं, जिनके फजलों करम से हम बहुत सारे काम करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं, एक हमारे पास एक सपोर्ट होती है अपनों की। तो बिल्कुल इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जी अपनों को भी एक ट्रैक डेडिकेट करते हैं। तो आते हैं वापस इस ट्रैक के साथ, लेकिन पहले एक ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक।

ऑल राइट जी, सो आप लोग इंजॉय कर रहे थे इस ट्रैक को, जो कि बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक है। ये दिल में रहने वाली, दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते। और इसी के साथ साथ हमारा आपसे सवाल ये था कि किसी इंसान को समझने के लिए आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है, तो क्या है ये भी हमें जरूर बताएं। रशीद खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मजे में हूं। कहते हैं कि जी मैं गुड हूं, ऑफिस से सुन रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं। दिन भी अच्छा गुजर रहा है, यस। आपकी इस खूबसूरत शो में वक्त स्पीड से गुजरता है, ये बात तो है। वैसे आजकल मुझे भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही स्पीड से जो है वो वक्त आजकल गुजर रहा होता है। कहते हैं रियली लंच में इनके आलू की कतलियां हैं। कहते हैं आपके लंच में, मेरे लंच में आज है रैप है आज मेरे लंच में, सो आई एम गोना हैव दैट। और कहते हैं कि जी साम अच्छा, कहते हैं कि किसी को अगर सामने लेकर आए और उससे मिलना जरूरी हो, उसकी आदत, उसकी नेचर का पता चल गया

होगा, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। ओके, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि कोई सामने आ जाए उससे मिलना जरूरी होता है, फिर उसकी आदत और उसकी नेचर का पता चल जाता है। हाँ, ये बात है वैसे, लेकिन पता है इसमें भी ये डिपेंड ये करता है अक्सर औकात कि ना, अगर बहुत आपकी छोटी सी मुलाकात है किसी भी शख्स के साथ और उसमें इतनी जल्दी आप ना किसी इंसान को बहुत जल्दी जज नहीं कर सकते। लेकिन भाई इसमें भी मैं एक बात कहूंगी, क्योंकि आज हमारा ये सवाल है, तो भाई जो हमारे बड़े हैं ना, ये बड़े स्ट्रांग और मैं कहूंगी कि सुपर पावरफुल होते हैं, क्योंकि जो हमारे बड़ों का आईक्यू लेवल है या जो हमारे बड़े जैसे किसी इंसान को जज कर लेते हैं ना, वो हम नहीं कर पाते भाई। वो हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारे अम्मा अब्बा हैं, ये लोग ना बस एक नजर में इंसान को बड़े ही परफेक्टली जज कर लेते हैं। शायद हम भी शायद उन उम्रों को पहुंचे तो शायद हमारे अंदर भी ये जो है वो इस तरह का अंदाज आ जाए किसी को जज करने का। लेकिन ना यार, ये बड़े जो है ना, ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से लोगों को जज कर लेते हैं बड़ी आसानी से। और मजे की बात क्या है कि अक्सर औकात हम उन्हें ये भी कह रहे होते हैं, अरे आपको नहीं पता, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो वैसा ही है या ऐसा ही है, जो भी मतलब जिससे भी आप मुलाकात करें या कुछ। और ये होता है कि वाकई में कुछ दिनों बाद जो आपके वालिदैन की भी बातें होती हैं वो सही साबित हो जाती हैं और आप कहते हैं यार मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा निकलेगा या ऐसा निकलेगी। इट डिपेंड्स, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, आपके ऑफिस से मिलते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, मतलब देयर लॉट्स ऑफ पीपल जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। लेकिन ये बात है कि पता थोड़ा बाद में ही चलता है, लेकिन आप किस तरह किसी इंसान को जज करते हैं हमें जरूर बताएं। जरीनूर कहती हैं, सलाम, कैसी हैं, बहुत दुआ आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। और चलते हैं हम ट्रैक की जानिब, आप हमें जरूर बताइएगा अपनी राय, हम आपके मैसेज का कर रहे हैं इंतजार।

यस माय फ्रेंड्स, तो आ गए हैं वापस। और भाई बड़ी मजे मजे की जो है ना, वो सब लोगों की राय मेरे पास आ रही है और जान के मुझे बड़ा मजा भी आ रहा है और सबका अंदाज ही पता चल रहा है कि भाई कौन किसको ना किस तरीकाकार के जरिए जज करता है। तो हमारा आज का सवाल ये है, सवाल भी आपको बता देते हैं कि किसी इंसान को समझने के लिए आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है। तो सब जवाब दे रहे हैं, लुकपल ने भी दिया है हमें, आरजे समिया ने भी ज्वाइन किया था वो भी बता रही थी, और रशीद खान ने भी कहा है कि भाई नेचर समझ आ जाए, नेचर

ऑल राइट जी, तो आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है शो में, क्योंकि मजे मजे के सबके जवाब जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, जिसे शामिल कर ना मुझे बड़ा ही ज्यादा मजा सा आ रहा है। और मैं कह रही हूँ कि चलो जी इंजॉय करते हैं सबके जवाब और सबकी राय, क्योंकि सबकी राय बहुत मैटर करती है कि भाई किस इंसान को कैसे जज करता है या किसकी क्या राय है किसी भी चीज को मद्देनजर रखते हुए। इसलिए मुझे मजा आता है और मैं इंटरेस्टिंग से सवाल अपने लिसनर से जरूर पूछती हूँ। तो जरीनूर कहती है, किसी को जानने के लिए उसके साथ आप थोड़ा टाइम साथ रहकर देखें कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है और उसकी आदत कैसी है। जरीनूर इज ऑल्सो वेरी राइट। ये बात जरीनूर ने ठीक कही है कि भाई किसी का पता करने के लिए, और वैसे ये बात हकीकत है, आप कभी भी किसी को पहले जज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसके साथ टाइम ना गुजारें। ये वाकई में सही बात कही है जरीनूर ने कि भाई आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है जब आप उसके साथ वक्त गुजारेंगे, उसकी आदत का, उसकी बातों का, एवरीथिंग। बेसिकली किसी भी शख्स का अंदाजा एक्चुअली में तभी लगता है जब आप उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। दीगर चीजें अपनी जगह हैं कि भाई हम ऐसे जज कर लेते हैं वैसे जो कुछ भी है, लेकिन वैसे बेसिकली वक्त गुजार कर ही पता चलता है। और आज हम अपने सवाल में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई कराची की गर्मी पर तो मैं जरूर बात करूंगी, क्योंकि भाई गर्मी मुझे लगती भी बहुत है और मैं इस मौजू पर गुफ्तगू भी जरूर करती हूँ, बिकॉज गर्मी इज एवरीवेयर इन कराची राइट नाउ। तो सबसे पहले आपको कराची का हम दर्जा हरारत बताते चलते हैं कि कराची का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो क्या ताजा तरीन सूरत हाल बयान कर रहा है। तो वो तो ये बता रहा है कि जी इस वक्त कराची का जो टेम्परेचर है 34 है एंड रियल फील्स लाइक इज 38। और वो जो है ये है कराची की गर्मी। लेकिन कराची वालों आप सबके लिए बेहतरीन खबर ये है कि ये साल 2026 की आखिरी गर्मी की लहर है। जी हाँ, साल 2026 में अब मजीद गर्मी की लहर का इम्कान नहीं है। जुम्मे से मौसम नॉर्मल हो जाएगा। 28 सितंबर से दिन क्या दर्जा हरारत में मजीद कमी हो जाएगी और मौसम मजीद बेहतर हो जाएगा। तो ये है अच्छी खबर इस वक्त तमाम सुनने वालों के लिए। तो भाई कराची का मौसम होने जा रहा है बेहतर, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। रशीद खान को उनके पसंद का ट्रैक सुनाते हैं, आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम कराची की तकनीक
4: एंड स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: Us on facebook.com/fm247365 fm247365

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas kyunki program ke second half mein hum dakhil ho chuke hain. To obviously guftagu ka silsile ko bhi aage badhayenge, aapke lunch ke bare mein bhi janenge, khoob sari aap se baat karenge kyunki ji baaton ka silsila to kabhi nahi rukta kyunki baatein aap logon ke sath chalti rehti hai aur hamara aur aapka saath 12 se 2 ke darmiyan hota hai aur ye saath bhi hamara aur aapka qaim o daim hai. और भाई ये बातों का सिलसिला आगे तब बढ़ता है जब हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत को कायम कर देते हैं, यानी कि एक अदद ट्रैक जो है वो तमाम सुनने वालों के नाम हो जाए तो फिर ही बातचीत आगे बढ़ती है. तो भाई हमसे हमारे लिसनर ने रिक्वेस्ट भी की है और ये मजे की बात यह कि आज हमसे दो तीन लोगों ने ना इसी ट्रैक की रिक्वेस्ट करी है कि आप इसको जरूर शामिल करिएगा. तो मैंने सोचा कि चलो मेजोरिटी विंस, ये ट्रैक आजकल सबको पसंद भी आ रहा है, इस ड्रामे से सब लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा मुतासर भी हैं. तो चलो जी इसी ट्रैक को आज हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको डेडिकेट कर देते हैं. सो आप लोग भी इंजॉय करें और हम भी करते हैं एंजॉय और फिर वापस आकर करते हैं आपसे मजीद बातें.

तो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि भाई ये ट्रैक हमने आप सबको डेडिकेट कर दिया है जो कि आजकल सबका बड़ा फेवरेट चल रहा है और मुझे भी बहुत पसंद आया है ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत डिफरेंट से जरा ओवेस्टी लग रहा है, बड़ा लाइट सा और प्यारा सा। और इसी के साथ साथ भाई इस ड्रामे से भी जो लोग हैं वो बड़े मुतासर हैं, क्योंकि एक बड़ी नई स्टोरी आई है और इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, कुछ मैसेज भी दिए गए हैं कि कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी होती है। और ये बहुत जरूरी भी है कि हमें हम ही समझ रहे होते हैं कि चाहे वो मियां बीवी के रिश्ते को अगर मद्देनजर रखते हुए बात करें तो अब इतने साल हो गए हैं, अब जिंदगी चल रही है तो अब क्या जरूरत है इज्जत देने की या कभी भी किसी का कहीं मजाक उड़ा लेना। ये हमें लगता है ये सब हमारी जो है ना वो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये चीज जब हम भूल जाते हैं ना कि हर इंसान दिल रखता है तो फिर हम बस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हर इंसान का दिल होता है, जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं, उनकी कदर करना बहुत जरूरी है, चाहे उनकी उम्र कम हो या उम्र ज्यादा हो, इज्जत का हक तो हर इंसान रखता है। खैर जी, तो प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल होते ही हम आपको बताते हैं तरीकाकार के कैसे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप हमें 3636 पर मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा सवाल है ये भी हम दोहरा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आज जो हमारा मौजूद गुफ्तगु है वो क्या है। तो भाई आज हमारा मौजूद गुफ्तगु है कि किसी इंसान को समझने के लिए आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है। तो आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है हमें जरूर बताएं, और इसी के साथ साथ ये बताएं कि आपके लंच में क्या है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, कुछ स्पाइसी है, कुछ नॉन स्पाइसी है, सब्जियां हैं, गोश्त है, चावल हैं, सालन है, दाल है, तो क्या इस वक्त आपके लंच में मौजूद है ये भी हमें जरूर बताइएगा। हमें जो है वो जरीनूर बताती हैं कि आज खाने में आलू कीमा और आलू के पराठे सैलड चटनी के साथ, वाओ, आलू कीमा भी और आलू के पराठे भी, लवली। कहती हैं आप कॉल्स क्यों नहीं लेती, अब वीक में एक बार कॉल लिया करें प्लीज, काफी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई कॉल पर, प्लीज शिराज उप्पल का एनी सॉन्ग। ये बात तो सही कह रहे हैं भाई, बहुत टाइम हो गया है कि हमने कॉल्स नहीं ली हैं प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम कॉल्स को जरूर शामिल करेंगे। तो वेरी सून हम आपको ये खबर देंगे कि हमने कॉल्स लेना शुरू कर दी हैं। सो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इंशाल्लाह जल्दी हम आप लोगों की कॉल्स को भी करेंगे शामिल। फिलहाल हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार कि आपके लंच में क्या है हमें बताएं, चलते हैं हम ट्रैक की जानिब।

हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। क्या कोई पता है आप किस गली जा रहे हैं या बस आप चले ही जा रहे हैं और यही सूरत हाल चल रही है। तो खैर जी, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, सवाल एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि किसी इंसान को समझने के लिए आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है। लंच भी बता दिया है भाई लोगों ने अपना, तो उसे भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आ चुका है रास्ते में एक अदद ब्रेक। तो ब्रेक को शामिल करते हैं और आते हैं वापस, फिर आपके मैसेजेस और आपके ट्रैक्स को भी करेंगे शामिल। डील होती है डन एंड वी विल बी राइट बैक।

बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात ठीक है कि जी अच्छे और बुरे वक्त में उसका आपके साथ होना भी उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है. यस थैंक्स फॉर माय खूबसूरत ट्रैक रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. एंड यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये हकीकत है कि वक्त साथ गुजार कर ही ना आप किसी का अंदाजा लगा सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस आप किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी नेचर है कि हम ना कुछ सोच रहे होते हैं, प्रेडिक्ट कर देते हैं कि यार ये ना ऐसा है या ये ना वैसा है, और हम ये प्रेडिक्शन ना जरूर किसी दूसरे तीसरे से शेयर भी कर रहे होते हैं, फिर बाद में हम रियलाइज करते हैं यार मैंने तो गलत सोचा था इसके बारे में. या और भाई जाहिर है हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप होती हैं, कभी कभी गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, कभी कभी डिफरेंट नेचर से हम लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन कूल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. गर्मी है, सर्दी है, रोडों पर गड्ढे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, या घर में किसी से लड़ाई हुई है, तो अक्सर औकात ये मूड लेकर भी ना आप अपने दफ्तर आ रहे होते हैं, दीगर जगहों पर जा रहे होते हैं, कभी किसी से मिलने के लिए भी आप जा रहे होते हैं, तो आप शायद इन मुश्किलात में से किसी एक का शिकार होकर जा रहे होते हैं, तो एक वो स्ट्रेस या एक वो जो आपकी डिस्टर्बेंस होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर आ जाती है, और फिर लोग आपको ना उस हवाले से जज कर लेते हैं. सो गाइस प्लीज सबको थोड़ा सा वक्त दें और ऐसे जो है वो किसी के बारे में कुछ ना सोचें. अच्छा भाई लुकपल कहती हैं रहीम शाह बेस्ट सिंगर हैं, कहती हैं मुझे दो ही सिंगर बहुत पसंद हैं, द फर्स्ट इज रहीम शाह और दूसरा मैं उनका नेम नहीं ले सकती क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है. ओके कोई बात नहीं, आप हमें बता दें, हम उनके ट्रैक्स में शामिल नहीं कर रहे लेकिन आप हमें बता सकती हैं. तो भाई नंबर वन तो रहीम शाह है, द सेकंड वन कौन है ये भी आप हमें बता दें तो हमें पता चल जाएगा. खैर जी ट्रैक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

Alrighty everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan and aap log sun rahe hain Genie Radio. Aur aap log ko batate chalein ki ye request show hai. You can request for your favorite tracks. Tareekekar bahut aap hame bata sakte hain, us track ka naam bataye, singer ka naam bataye aur aapke liye play ho jayega. So janab, abhi time ho raha hai 2:00 jo hain wo 12 मिनट हो गए हैं एंड हम लोग 4 बजे तक आप लोगों के साथ मौजूद हैं. ओके, इस गाने के बाद आप लोग के मैसेजेस पढ़ना शुरू करते हैं और टॉपिक भी अनाउंस करेंगे. हमारे साथ रहेगा द ट्रैक इज कन्नायारी बाय कैफी खलील. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
4: and Step School se foundation ho strong. Call now at 03111117837.
5: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
6: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

ओके, हमारे पास मैसेज आया है, ये नाम नहीं लिखा है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि आतिफ असलम का कोई सैड सॉन्ग लगा दीजिएगा. अच्छा चलें सही लगा देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स रिक्वेस्ट ऑफ जरी नूर. द ट्रैक इज लगाया दिल, और फिर कुछ देर बाद आके टॉपिक अनाउंस करेंगे. हमारे साथ रहेगा.

Alrighty, everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान and it's 36 minutes past one the dial right now. आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर and facebook.com/rz.jasmine. इनबॉक्स आप हमें कर सकते हैं वहां पे और बता सकते हैं जो भी ट्रैक आप सुनना चाहते हैं तो मैसेज करके हमें बता दें. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं आपकी कोई ऐसी फनी मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो आपके साथ हुआ हो और आप अब तक उस मिसअंडरस्टैंडिंग को याद करके हंसते हैं. लेट अस नो ऑन 3636 वो क्या था, किस चीज पे आपको गलत फहमी हुई थी लेकिन वो फनी थी. लेट अस नो ऑन 3636, वहां पे मैसेज करके आप हमें बताइए. ओके, सो जरीन नूर ने मैसेज किया है, उन्होंने थैंक्स लिखा है. यू मोस्ट वेलकम जरीन नूर, आपका ट्रैक हमने प्ले कर दिया था. ओके, मुनव्वर ने हमें मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं. अच्छा, उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, हवा हवा प्ले कर दीजिए हसन जहांगीर का. ठीक हो गया है, अभी चला देंगे आपके लिए. ऐशा इज एक्सीडेंट, जाने ना तू, सॉन्ग रिक्वेस्ट किया अली खान का. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो जनाब, टॉपिक के हवाले से बात हो रही है, आपने हमें बताना है कि कौन सी ऐसी फनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको आप याद करके स्टिल हंसते हैं. लेट अस नो 3636. मीनवाइल एक और गाने की तरफ जा रहे हैं, मिलते हैं हमसे इस गाने के बाद. द ट्रैक इज रिक्वेस्ट ऑफ मुनव्वर, हवा हवा सॉन्ग बाय हसन जहांगीर.

0: Genie in Radio. Radio.
1: You can listen longer. Music. Music. Flashes.
2: In my head.
1: FM 100.
3: Straight from the studios of FM 100 to the transmission tower, through the airwaves into your stereo.
4: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.
0: Genie in Radio. Radio.
5: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे ना बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
6: This program is brought to you by
7: Shaukat Khanum, Karate Ki Takleef.
8: And Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311 111 7837.

Alright, so that was the song. ये आपने बताना है कि ये कौन सा song है. बड़ा आसान है. जो हमें सही जवाब देगा हम उसकी दो रिक्वेस्ट इंक्लूड करेंगे. ओके, हमारे पास निम्रा का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम. बालो बतिया ने रिक्वेस्ट किया है. ठीक हो गया, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. उससे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी अली खान के गाने के लिए. द ट्रैक इज जाने ना तू. सो ये प्ले कर रहे हैं. मिलते हैं इस गाने के बाद.

Alrighty everyone, so आपने अब बताना है मुझे कि गाना कौन सा है. हम लोग इस कॉम्पिटिशन को 3:30 तक या 3:15 तक जो है वो एंड कर देंगे. So let us know ki kaun sa song hai. Meanwhile, we are moving on towards another track. The track is Balubatiyan by Aliza Fir. Milte hain is gaane ke baad.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ
3: एंड स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
7: Genie in radio.

Radio. Alrighty, everyone. Welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. I'm looking at my messages. Get in 3634. And Sarish ne hame message kiya, Walaikum Assalam. Bilkul theek thaak, aap bataiye aap kaisi hain. Okay, inhone mausam song jo hai request kiya hai, Josh ka, theek ho gaya. Thank you so much for your message. We'll definitely play your song. Right now we are moving on towards जो अभी हमने गेस्ट सॉन्ग का कंपटीशन रखा है वो हम आपको सुनाएंगे. आपने हमें सुन के बताना है कि वो कौन सा सॉन्ग है जो हमें सही जवाब देगा. हम उसके दो सॉन्ग्स जो है वो इंक्लूड करेंगे. सो दिस इज द सॉन्ग.

Alrighty, बहुत आसान सा सॉन्ग है और जवाब हमारे पास आना शुरू हो गए हैं. नूर ने हमें जवाब दिया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज नूर. आपका हमने जो जवाब है वो नोट कर लिया है. मुझे दो रिक्वेस्ट, अगर आप जो भी है मुझे साथ में ही बता दो. सही है, बिल्कुल. आप लोग जब सॉन्ग का नाम बता रहे हैं तो अपनी रिक्वेस्ट भी साथ बताएं. ओके जरीन नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके हारिस ने मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम. हारिस आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक. दिस इज गोइंग टू बी द सॉन्ग कॉल्ड मौसम बाय जोश. मिलते हैं इस गाने के बाद.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. Okay, मैं अभी जरीन नूर का मैसेज पढ़ रही थी एंड उन्होंने कहा है कि मेरी दोस्त जो है वो पान बहुत शौक से खाती थी और मेरी अम्मी का जो है वो अच्छा पानदान था और जब भी वो आती थी तो अम्मी से पान बनवाकर जरूर खाती थी. ठीक है, और उस दिन अम्मी घर पर नहीं थी, मैंने पान की जगह पीपल का पत्ता खिला लिया. ओके, और वो उसने उसको भी खुशी से वो खाकर खुश हो गई एंड बाद में मेरी शामत आ गई. ओके जरीन, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. वैसे ही बताएं कि हुआ क्या था, आपने बताया था अपनी दोस्त को या उसको आइडिया हो गया था? आप कैसे रेड हैंडेड पकड़ी गई, आप हमें बता सकती हैं मैसेज करके. और हमारे पास मैसेज आया है अली का. और नहीं यार, ये सॉन्ग नहीं है जरीनूर, आपने भी मुझे ना सही जवाब नहीं दिया है. गौर से सुने यार, बहुत आसान सॉन्ग है. उसमें अगर आप उस सॉन्ग को जो है गौर से सुनेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो टोन भी आ रही है. उबैद आफरीदी ने हमें मैसेज किया है, सॉन्ग का नाम भी बता दिया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, जवाब आपका नोट कर लिया है. हमें सॉन्ग्स बता दें अपने जो आप सुनना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भेज दें. जो विनर होगा उसकी दो रिक्वेस्ट इंक्लूड की जाएगी. मैं दोबारा से वो सॉन्ग चला रही हूँ, गेस द सॉन्ग का, गौर से सुने प्लीज.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365
7: Radio, radio.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and messages jo hain wo hamare paas kafi sare aa rahe hain, and hamare paas Zari Noor ka message hai. Zari Noor, thank you so much for your message. Unhone song ke hawale se bataya hai, and hamare paas Sabha ka message aaya hai Karachi se. Unhone bhi hame song ka naam bata diya hai. Theek hai, thank you so much for your message. लिखती है शो इज वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एंड अभी टाइम है कि हम आपको जो है वो सॉन्ग बता दें कि ये कौन सा गाना था जो हम आज कॉम्पिटिशन में आपको सुना रहे थे. ओके, नूर का भी मैसेज जो है हमने इंक्लूड कर लिया है. नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. मुझे आपकी दो रिक्वेस्ट जो है वो मिल गई हैं, और ठीक है. सो ट्रैक जो था वो था सोचता हूं बाय नुसरत फतेह अली खान साहब, और कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, और कुछ इस सॉन्ग को जो है वो गलत गैस कर रहे थे, मेरे रश के कमर कर रहे थे, लेकिन ये जो है वो सॉन्ग है सोचता हूं कितने मासूम थे. सो दिस इज द ट्रैक, एंड लिसन टू इट, और ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये वही सॉन्ग था.

Alrighty everyone, so that was the song Sochta Hoon Wo Kitne Masoom Thay. And yeh aaj hamara jo hai guest song competition ka song tha. And thank you so much, Noor ne hame do request bheji thi, which was Khani ka OST. And second one unhone request kiya tha, Main Ura Parwaaz Hai Junoon ka. So if you're listening, Noor, congratulations, aap hamare is competition ki winner hai. And Zareen, Noor, aap bhi hamare competition ki winner hai. Dono ke naam ke saath Noor Noor lag raha hai. Dono Noor jo hai, wo aaj jeet gayi hai. Thank you so much. और उबैद ने भी हमें सही जवाब दिया था, उबैद आफरीदी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अगर कोई एक रिक्वेस्ट आप बताना चाहते हैं वो तो हम डेफिनेटली इंक्लूड कर ही रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके. सबा, आपने भी सही जवाब दिया है हमें, थैंक यू सो मच. और अगर कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे बताएं और एक रिक्वेस्ट जो हम इंक्लूड करेंगे. सो मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स रिक्वेस्ट ऑफ नूर. दिस इज गोइंग टू बी द सॉन्ग कॉल्ड मैं उड़ा. मिलते हैं इस गाने के बाद.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan and messages aa rahe hain hamare paas kafi saare. Okay, Hira ne message kiya tha aur unhone mere paas paas song request kiya hai Hatika Kayani ka. So if you're listening, aapke liye chalate hain. Hamare saath rahega. And Saba ne message kiya hai. उन्होंने कहा है प्लीज प्ले माई फेवरेट सॉन्ग ये दिल क्यों तुम्हारा इतना बेयकीन है बाय अली अजमत. ओके थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज अप्रिशिएट इट. सो मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स रिक्वेस्ट ऑफ हेरा द ट्रैक इज मेरे पास पास बाय हदिका के आने मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: Let the music take control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
2: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
3: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखिए, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता, लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.ncciia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbb.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
6: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: facebook.com/fm247365
8: fm247365
9: in radio

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365 FM 100
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

Acha. Now we come to run things on the road. See?

0: is FM 100.
1: Come on.
2: दुनिया से बेखबर जो कहना था कहने दे आंसू ये बहने दे यार बोले दे खबर बोल खोल दे हम जान भी दे देंगे तेरे कहने पे वक्त पूरा ना हो बेसबर मेरे लफ्ज़ तुझ पे कर्ज़ ये दर्द

0: Your location for maximum music.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Across the nation, there is only 100 FM.

0: your location for maximum music.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी तीन दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ ₹100 का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
7: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-275-8492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
8: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
9: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
10: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
9: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
11: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311-111-7837।
12: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरो इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
13: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड विया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: एंड डाबर रेड टूथपेस्ट 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
6: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली.
7: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: This is your music.

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
4: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
6: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
5: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: सर सब्स नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
1: एंड
8: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
1: And
9: we are telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
1: And
10: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
1: And
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: And
11: डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन.
1: And
12: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
13: facebook.com/fm247365 fm247365

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. Premium has its shape.
3: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
7: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
8: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
9: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं.
10: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका. साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक. तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311111-7837.
12: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
13: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए. तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात. पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा
0: एंड
2: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
3: वी आर टेली हेल्प पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
0: एंड
4: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
0: एंड
5: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
0: एंड
6: डाबर रेड टूथपेस्ट 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन
0: एंड
7: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
8: FM सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार शराइत तो जवाबित लागू है सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार शराइत तो जवाबित लागू है
9: 24/7 only on 1 FM 100 the best entertainer
8: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार शराइत तो जवाबित लागू है
9: Across Pakistan, this is 100 FM.
8: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार शराइत तो जवाबित लागू है

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स।

0: सीधे अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
1: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
1: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
1: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
3: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
7: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
6: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत जवाबित लागू है.
0: This program is brought to you by Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
7: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
8: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
9: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
10: Dabur Red Toothpaste, 7 dental problems ka ek solution.
0: And
11: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
12: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
13: FM 247365.

0: 7 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. This program was brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja. And
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: VR Telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
3: Tabal Family Mixture laye, umrah par jaye.
0: And
4: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: And
5: Dabur Red Toothpaste, 7 dental problems ka ek solution.
0: And
6: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
7: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम कराची की तकनीक।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
14: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
15: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
16: 100 FM।
17: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

Valerie Prance, welcome back to the air. Here we go. FM 100.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: 100 FM
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: 100 FM
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: 100 FM
5: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत. पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.
4: 100 FM
6: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत और ज़वाबित लागू है.
7: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk

0: Spotify, Android phone, Graham phone. Across the nation.
1: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
2: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 saal
3: na koi bahana na koi fasla.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 100 100.

0: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
1: FM 247 365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: 365. All right, Wave Friends, coming in with a track by Zoe and of course Zoe Basan, a double C, rather I would say Z square, with Chana. You may be away from sight, but you're in every heartbeat. Yeah, aapke liye.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: उमरा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ. डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनाम हर हफ्ते. डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन.
3: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
5: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है.
7: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
8: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
9: हमारी जिम्मेदारी है.
10: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by Shaukat Khanum Karachi ki Takleef.
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की तकलीफ।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: मेरा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनाम हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
1: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
3: Us on facebook.com/FM247365.

0: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखी से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतल्लिका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्ती तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: Like us on facebook.com/fm247365.
6: Back to back, back to back. Only music, no art.

0: उम्र जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदें, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्र और बेशुमार कीमती इनाम हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365
3: Yeah.

0: facebook.com/fm247365
1: FM 247 365.

0: is facebook.com/FM247365.
1: FM247365.

FM 100's time check. It's 12 midnight.

वेलकम बैक कहेंगे। सुनो, रोज कब तेरी दीद होती है, ये ट्रैक सुना हमने और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जाने, और हमारी प्यारी सी शहजादी बहन जरीन नूर आ चुकी हैं और सलाम की बात कह रही हैं कि तमाम सुनने वालों को, मेरे वालिद मोहतरम को, संजू को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मुस्कुराती रहो। पाकिस्तान बाजार से रेहाना आ गई हैं और कह रही हैं सलाम मैंने आपको और तमाम लिसनर्स को, सलाम और दुआ। आसान नहीं है मुझे हर किसी का

वेलकम बैक आएंगे सुनियो रात फतेहरी साहब और अब्रारुल हक की आवाज आपने सुनी तस्वीर इसका टाइटल है और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अब एक गजल और चलेगी नए इंतखाब से और उसके बाद फिर हमारी पसंद की गजलें सुनिएगा आप सब। बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानेब और शुगर संजू आ गई हैं, अच्छा लग रहा है, जरीन नूर कह रही हैं, अरे वाह भाई वाह। और इमरान इमाम बख्श सयाल साहब कह रहे हैं कि प्लीज प्ले गजल। अच्छा जी, आपने फरमाइश एक और कर दी है, आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे। और हाँ जी, हम उम्र भर तुम्हारे लिए दिल के हर रास्ते पर फूल बिछाते रहेंगे, जिधर से दिल चाहे चले आना। जरीन नूर जीती रहो मेरी बहना, बहुत खूबसूरत सा मैसेज। और हम एक और इंतखाब शामिल करेंगे, इंतखाब का दौर दूसरा दौर शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले रूहमन सुनो मेरी रूहमन, लबों की खामोशी को मैं महज सकूत नहीं समझता, बाज़ोकात ये खामोशी करार होती है, जैसे अल्फाज की मोहताजी नहीं रहती। तुम जरा सा करीब आओ तो रूहमन फासले अपनी हैसियत खो देते हैं और दिल के नेहा दरीचे यूं वाह होने लगते हैं, जैसे किसी दरीनाए मकतूब पर पहली बार मोहरे राज टूट जाए। ना कोई अहद जुबां पर आता है, ना कोई अहद जुबां पर आता है, ना कोई दावा लाजिम ठहरता है। तुम्हारी कुर्बत ही रूहमन वो दलील बन जाती है, जिसके सामने दिल को किसी और सबूत की तलब नहीं रहती। उसकी एक साथ में यूं महसूस होता है जैसे जमाना बाहर कहीं रवां है और मेरे लिए जिंदगी सिर्फ रूहमन तुम्हारी कुर्बत के उस मुख्तसर मगर अबदी लम्हे में ठहर गई है। अब तो रूहमन सांसों का इख्तिताम है, इब्तिदा भी इंतहा भी तुम हो, जिसकी कोई इंतहा ना हो रूहमन तुम वो जमाना हो, जिसका कोई अंजाम नहीं मेरी रूहमन। क्या बात है जनाब, क्या एहसास है, जबरदस्त जबरदस्त संजू। दूसरा इंतखाब शामिल करेंगे हमारी नौरीन बहना का। कहती हैं कि अपनी तस्वीर को रखकर तेरी तस्वीर के साथ मैंने उम्र गुजारी है बड़ी तदबीर के साथ, जिसको अपना बनाते हैं बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कातिबे तकदीर के साथ। मुश्क कहती है उसकी लचक पर दम फिदा उसकी अदा पर दिल निसार, हाय वो शाख सी कमर, हाय वो कद निहाल सा। क्या बात है यार, ये दाग देलवी साहब ही ऐसा लिख सकते हैं। उसकी लचक पर दम फिदा उसकी अदा पे दिल निसार, हाय वो शाख सी कमर, हाय वो कद निहाल सा। वाह वाह मुश्क, जबरदस्त।
साहिल समंदर और आपका अकेले टहलना अच्छा नहीं लगा। कोई तो साथ होता, जस जोग नहीं कहे भाई। हंसी आ गई हमें आपकी बात से। और जनाब हमारे प्यारे से अयूब आफरीदी साहब ने आज कोई इंतखाब नहीं भेजा, बस एक डेडिकेशन का कहा, वो हमने कर भी दी। खैर जी आगे बढ़ते हैं। हमारे इनामुल हक साहब कहते हैं, उनका इंतखाब पहले शामिल कर लें जनाब। हाय बहुत खूब यार। कहते हैं कभी हम भी हंसा करते थे, ख्वाब आंखों में बसा करते थे, वक्त ने ऐसी करवट ली है हम खुद से भी जुदा करते थे, याद अब भी वही आती है जिसको दिल से दुआ करते थे। दिल में एक शोर सा उठा है, कोई अपना कहीं खफा हुआ है, हम तो समझते थे जिंदगी है सफर, ये सफर तो कहीं रुका हुआ है, चांद तारों का क्या है वो तो है, दिल किसी और से जुड़ा हुआ है, रात भर जागता है कोई अंदर, कैसा सन्नाटा है सदा हुआ है सदा हुआ है। बहुत खूब भाई इनाम भाई, क्या बात है। और कह रहे हैं भाई जान एक ट्रैक गजल सलीम भाई को और संजीदा को डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे जनाब आपकी जानिब से, क्यों जी, हैं जी। और फरहान भाई का हम दूसरा इंतखाब शामिल करते हैं। दूसरा दौर चल रहा है। डॉक्टर कलीम आजिज साहब का इंतखाब है ये, और कहते हैं मेरे ही लहू पर गुजरा, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो, हो मुझसे ही अमीरों की तरह बात।

अच्छा फरहान भाई, ये इस गजल में बिल्कुल एक मिसरे के बाद हो जो आ रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं एक शेर पढ़ता हूँ हो के साथ, और उसके बाद बगैर हो के पढ़ूंगा। लिखा है कि मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, दिल एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। ये तो मेरी समझ में नहीं। अब मैं हो हटा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो या तो इजाफी है या इसकी कोई वजह होगी। कहते हैं कि मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो, दिल एक सितम रात करो, दिन एक सितम रात करो, वो दोस्त दुश्मन को भी तुम मात करो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो, दामन पर कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, दामन पर कोई छींट ना खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो के करामत करो, तुम कत्ल करो हो के करामत करो हो। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं, जब वक्त पड़ा है तो मदारात करो हो, बिकने भी दो आजिज को जो बोले है बिके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो। इसका कोई ना कोई वजह होगी मैं जो कि मेरे जहन में नहीं आ पा रही। डॉक्टर करीम आजिज साहब ने मैं ये बिल्कुल उनकी आवाज में सुनूंगा या किसी की भी आवाज में, तो हो सकता है मैं अदायगी में कोताही कर गया हूँ। मैं आप सबसे माजरत चाहूंगा, इतना मुश्किल क्यों भेज दिया भाई। हो चले भाई, इसी बात पर हम चलते हैं अगली गजल की जानिब। और अब क्योंकि दो बज चुके हैं तो लिहाजा अब गजलों का जो दौर शुरू हो रहा है वो दूसरा दौर शुरू हो रहा है। ये गजल जनाब हम रूहे जां को डेडिकेट कर रहे हैं नौरीन तौसीफ की जानिब से। समात फरमाइए।

वेलकम बैक कहेंगे सुनो तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है। शकीला खुरासानी की आवाज और नौरीन की जानिब से रूहे जान के लिए। उम्मीद करता हूं आप सबको भी ये गजल पसंद आई होगी। अच्छा जनाब, कहीं मिल सके तो समेट मेरे रोजो शब की कहानियां, कहीं मिल सके तो समेट मेरे रोजो शब की कहानियां, जो वक्त के साथ गुजर गई वही फुर्सतें मुझे चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। जरीन नूर मेरी प्यारी जी बहन ने ये शेर भेजा है। और जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, मगर अफसोस नादान जवानी ने भी अपना काम दिखाया था। साहिबजादा साहब आ गए हैं एक खूबसूरत से शेर के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अलीमुद्दीन यूसुफ जही साहब के अशआर हमने शामिल नहीं किए थे, वो भी शो में शामिल करेंगे जनाब। उनके इंतखाब जो है तीसरा दौर क्योंकि शुरू हो चुका है, मगर हमने दो दौर में उनके अशआर शामिल नहीं किए, तो लिहाजा उनके दो अशआर जो हैं, दो उनके इंतखाब जो हैं वो शामिल करेंगे। मोहीउद्दीन हमदम इनके मेरे ख्याल बहुत ही पसंदीदा शायर हैं। हसरत दिल सुनाती रही रात भर, आंख मोती लुटाती रही रात भर, सुबह दम गुल हुआ जिंदगी का दिया, जबकि लौ थर थराती रही रात भर। क्या बात है भाई, बहुत खूब। और इन्हीं का दूसरा इंतखाब मोहीउद्दीन हमदम साहब का, अपने तो अपने हैं उनसे ये अदावत कैसी, गैर तो गैर हैं गैरों से मोहब्बत कैसी, ढूंढते उसको हो जिसको नहीं पाना मुमकिन, सर पे तारी है तुम्हारी ये हिमाकत कैसी। वाह, उसको ढूंढा उसे पाया उसे खोया मैंने, हो गई उससे बड़ी कहिए तो कयामत कैसी, चाह में भूल गए अपनों के हाथों यूसुफ, चाह में भूल गए अपनों के हाथों यूसुफ, गैर से होती भला उनको शिकायत कैसी, करते एहसान है तो लोग जताते क्यों हैं, हर गर्ज़े पिन्हा तो ऐ दिल ये सखावत कैसी। ये बहुत खूबसूरत शेर है, इस पर कुछ कहना चाहूंगा। फी जमाना, करते एहसान हैं तो लोग जताते क्यों हैं, हर गर्ज पिन्हा तो ऐ दिल ये सखावत कैसी। वाह वाह, रिश्तों में करते हैं महरम भी खयानत लोगों, घोर अंधेरा सा रहता है कैसा ये जिल्लत कैसी, सर में क्यों सौदा रहता है समाया हमदम, दिल के गलियारों में उठती है बगावत कैसी। ये जनाब हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जही साहब एफवी एरिया कराची से। गुल साहब कहते हैं, मुझको पहचाना देर के बाद मैं खुला उस पर इस शेर के बाद। हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब। और

कहते हैं मुझसा कोई जहां में नादा भी ना हो, करके जो इश्क कहता है नुकसान भी ना हो। क्या बात है भाई, सादुल्ला शाह साहब। तो जनाब अभी हम बढ़ते हैं एक और गजल की जानिब, और ये इमाम बख्श साहब की जानिब से आप सबको डेडिकेट करते हैं।

वेलकम बैक। अब हर बात याद रहती है, अब हर बात याद रहती है, गालिबन मैं किसी को भूल गया। अब हर बात याद रहती है, गालिबन मैं किसी को भूल गया। एक और इंतखाब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। पत्थर बना दिया मुझे रोने नहीं दिया, पत्थर बना दिया मुझे रोने नहीं दिया, दामन भी तेरे गम ने भिगोने नहीं दिया। तन्हाइयां तुम्हारा पता पूछती रहीं, शब भर तुम्हारी याद ने सोने नहीं दिया। आंखों में आके बैठ गिनी अश्कों की लहर, आंखों में आके बैठ गिनी अश्कों की लहर, पलकों पे कोई ख्वाब पिरोने नहीं दिया। दिल को तुम्हारे नाम के आंसू अजीज थे, दिल को तुम्हारे नाम के आंसू अजीज थे, दुनिया का कोई दर्द समोने नहीं दिया। नासिर यूं उसकी याद चली हाथ थाम के, नासिर यूं उसकी याद चली हाथ थाम के, मेले में इस जहां के खोने नहीं दिया। नासिर काजमी साहब का ये इंतखाब आपकी समातों की नजर किया। और अब जो है एक और चौथा दौर है ये जनाब, और मेरा ख्याल है ये चौथा दौर आखिरी दौर है आपके इंतखाब के हवाले से। तो शामिल करते हैं सबसे पहले संजू का इंतखाब, रूहे मन का इंतखाब। कहती है सुनो मेरे रूहे मन, काश मैं तुम्हारे सीने से अपना सीना यूं मिला सकूं कि हमारे दरमियान मौजूद हर फासला खामोश हो जाए, और तुम्हें मेरे दिल की वो धड़कन सुनाई दे जिसमें हर आहंगन हर आहंग पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। काश तो मेरी कुर्बत में ठहर कर ये महसूस कर सको कि मेरे वजूद की हर सांस हर धड़कन और हर एहसास के नेहा खाने में सिर्फ तुम ही आबाद हो। मोहब्बत शायद वो लफ्ज नहीं जिसे जुबान पूरी तरह बयान कर सके, ये तो एक ऐसी कैफियत है जो खामोशी में जन्म लेती है, दिल से गुजरती है और रूह तक उतर जाती है। कुछ ऐसा साथ कहे नहीं जाते, रूहे मन सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और तुम मेरे लिए वही एहसास हो जिसे लफ्जों में समेटना मेरे बस में नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं, मैं तुम्हें अपने अंदर जीती हूं, तुम मेरी सोच में उतरे हो, मेरी खामोशियों में बोलते हो, मेरी तन्हाइयों में मेरे साथ रहते हो। तुम्हें महसूस करने के लिए मुझे किसी लम्स किसी आवाज या किसी वादे की जरूरत नहीं, तुम्हारे ख्याल ही मेरे वजूद में एक मुकम्मल एहसास बनकर धड़कता है। और शायद मोहब्बत की सबसे खूबसूरत हकीकत यही है कि जिस्म फासले पर रह सकते हैं मगर रूहें नहीं। मेरी रूह आज भी हर खामोश लम्हे में तुम्हारी तरफ सफर करती है, जैसे उसे मालूम हो कि सफर की आखिरी मंजिल भी तुम हो
اور اس سفر کا سکون بھی تم ہو۔ میرے روح من، میری سانسوں کی آخرت بھی تم، میرے روح من۔ کہاں سے لاتی ہیں اتنی زبردست قسم کی باتیں؟ اچھا جناب، ان کے کچھ انتخاب اور بھی ہیں، وہ بھی شامل کریں گے سنجو، مگر وقت نے اگر اجازت دی تو۔ یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اچھا جناب، فرحین دبئی سے کہہ رہی ہیں، واہ واٹ اے سلیکشن، زبردست، کچھ ڈیڈیکیٹ ہو جائے تو کیا بات ہے۔ بالکل کر دیں گے جناب، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جناب، مجھ سے کہتی تھی وہ تم سے دور نہیں رہ سکتی، مجھ سے کہتی تھی وہ تم سے دور نہیں رہ سکتی ہوں، ایک ہی امریکن رشتے نے مجھ سے 15,000 میل دور کر دیا۔ صاحبزادہ صاحب کا میسج ہے یہ بھی، اس میں بھی کرب ہے جناب بچھڑنے کا۔ ہائے، محبوبہ کی اگر شادی ہو جائے تو وہ اسی شہر میں رہتی ہو نا، پھر بھی حوصلہ ہوتا ہے یار، چلو جا کے دیکھ لیں گے، گو گی کسی کی ہو گئی، مگر 15,000 میل دور کون جائے۔ خوب ہے بھائی، خوب ہے بھائی، خوب ہے۔ ابھی ایک اور غزل کی جانب جائیں گے جناب، اور یہ غزل جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ہمارے پیارے سے سلیم ایمن صاحب کو، اور سنجو کو انعام الحق کی جانب سے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو بھی پسند آئے گی۔ کہاں گئی غزل بھیا؟ یہ رہی، سماعت فرمائیے۔

वेलकम बैक। सुनो तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, ब्यूटीफुल गजल गुलशन आरा सईद की आवाज, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेहरुल्ला गबोल भाई, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत पहले इनका मैसेज आया था कि शो सुन रहे हैं आज। मेहरुल्ला भाई हमारे बहुत पुराने लिसनर।

हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं और महकमा मौसमियात में होते हैं, अक्सर मुझे खबरें देते रहते हैं कि भाई आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, चार दिन बाद बारिश होगी, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई। खैर जी, वक्त फुर करके उड़ गया और आप लोगों ने भरपूर शिरकत की और हर एक ने अपने अपने इंतखाब भेजे जो कि शामिल शो करता रहा। और अब जो है संजू का इंतखाब उनमें से चंद रह गए हैं और कहती हैं कि जजाकल्ला इंतखाबात को शामिल किया जनाब, अभी एक और भी है आपका, वो भी शामिल कर लेते हैं लास्ट। कहती हैं कि क्या कहती हैं, मेरी दुनिया के आखिरी मेरी रूहे मन सुनो, मेरी दुनिया मेरे रूहे मन, तुम जानते हो मेरे लिए मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात क्या है, करीब बैठना, हाथ थामना, नहीं वो लम्हा जब तुम मेरे बिल्कुल पास हो, बातें किसी और मौजू पर हो रही हो मगर मेरी सारी तवज्जो बस तुम पर ठहरी हो, और जब तुम मेरी नजरों को महसूस करके हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछो क्या देख रही हो, तो दिल करे बस इतना कहूं, कुछ नहीं, बस अपनी दुनिया देख रही हूं। इस इख्तितामी दुनिया के मेरे पहले और आखिरी रूहेमन, मेरी मुकम्मल दुनिया हो, मेरी दुनिया हो। अच्छा भाई, हमारे प्यारी सी नौरीन भैना ने दाग दिलवी साहब का एक बड़ा जबरदस्त इंतखाब भेजा है, लेकिन उससे पहले ना दुआ सलाम में बेकरार, ना इज्तनाब का फायदा, किसी हाल में नहीं हो रहा है मुझे जनाब का फायदा, जिन्हें अहदे रफ्ता की निकतें नहीं मेरी सिमत बुला सकी, उन्हें क्या बताऊं मेरी डायरी में पड़े गुलाब का फायदा। अहमद अब्दुल्ला साहब का फरहान रजा भाई ने लास्ट जो है इंतखाब भेजा है। अच्छा, एक दाग दिलवी साहब का इंतखाब भेजा है और मेरी बहुत पसंदीदा गजल है ये। नौरीन भैरा ने भेजी है, बहुत पसंदीदा गजल है और ये मलका तरन्नुम नूर जहान ने गाई भी है, तो उनकी आवाज में भी सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले ये गजल सुना दें। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जो जमाने के सितम है वो जमाना जाने, जो जमाने के सितम है वो जमाना जाने, तूने दिल इतने सताए हैं कि जी जानता है, तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज, तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज, वो मेरे दिल में समाए हैं कि जी जानता है, इन्हीं कदमों ने तुम्हारे इन्हीं कदमों की कसम, इन्हीं कदमों ने तुम्हारे इन्हीं कदमों की कसम, खाक में इतने मिलाए हैं कि जी जानता है, दोस्ती में तेरे दर्रे पर्दा हमारे दुश्मन, दोस्ती में तेरी दर्रे पर्दा हमारे दुश्मन, इस कदर अपने पराए हैं कि जी जानता है। अच्छा, इसका एक और शेर भी है इस गजल का, वो इन्होंने लिखा नहीं है, वो हम आपको सुनाते हैं।

क्या बात, इख्तिताम इसी पे किया जनाब। और जाते जाते एक बहुत प्यारी सी गजल, मेरी बहुत पसंदीदा गजल है इस वजह से कि आपदा परवीन साहिबा की आवाज में है। तो ये हम डेडिकेट करेंगे भाई हमारी फरहीन दुबई वाली और मेरी प्यारी सी बहन अरूसा को भी, क्योंकि अरूसा की भी ये फेवरेट गजल है। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी जनाब कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।